अर्को श्रीमानलाई विदेश पठाएर विदेशबाट खुन पसिना नबनी कमाएको पैसाले यहाँ अर्कै माटोसँग सल्किँदा तिमी महिलालाई चाहिँ यो समाजले के राम्ने है।